101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले 2:00 PM मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश

0: देश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन ईआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। जुड़ते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रमों के साथ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। अर्थात समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए और बात करना चाहिए। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस गान भाग 241। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 से हमें राही प्यार की। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा।

8:30 सुबह चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता परीक्षित साहनी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनेगा, प्रस्तुति तेज श्री कामले। ग्यारह बजे रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से सुनिए सुरीला सफर।

दो बजे दोपहर त्रिवेणी 2:30 से सदाबहार नगमे सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली दिन में 3 बजे से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देउलकर से ममता सिंह की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान शाम 5 बजे छाये गीत पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता कार्यक्रम आपको फिर से याद दिला दें श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6 कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार संवादिका ममता सिंह प्रस्तुति अनुश्री पाठक की फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से आज होगी फिल्म आपकी कसम हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट लेखक मदन बिहारी शरणदीप निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद 8:15 पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम 9:30 आज के फनकार आपको याद दिला दें अभिनेता परीक्षित साहनी पर केंद्रित होगा प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले रात 10 बजे छाये गीत प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। पंडित रोनू मजुमदार विविध भारती के स्टूडियो में हैं और सुर लहरियां जैसे तैर रही हैं और हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं इनकी बातें और बांसुरी की तान। दादा, हमारे मन में एक बात आ रही है कि आपने बहुत सारे फिल्मी गानों में बांसुरी बजाई है
2: जी।
1: तो उन फिल्मी गीतों का हम क्यों न चर्चा करें।
2: जैसे मैं आर डी बर्मन के पास गया तो लव स्टोरी से तो मेरी एंट्री हो गई
1: जी जी।
2: तो उसके बाद अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, किशोरदा के साथ और

0: जिम जिम तारा, ये गाने में भी मेरा सुर है।
1: इसमें बांसुरी पर आप अगर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको तकलीफ देते चल रहे हैं।
0: मुखड़ा अंतरा तो याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुनाता हूँ।

0: वाह।
1: इसमें शुरू में फ्लूट का आलाप है, किशोरदा आते ही सिंगर बूथ की तरफ जाते थे कहीं देखे बगैर।
0: अच्छा।
1: थोड़ा आगे गए और फिर पीछे मुड़ के मेरे पास आ गए, मुझे बोले कि अच्छा मेरी प्रैक्टिस स्टूडियो में भी चलती रहती थी।
0: जी जी।
1: तो मैं अपना पीलू बजा रहा था, तो बोलते पीलू क्यों बजा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, तू पहाड़ी बजा पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: मैंने बोला अरे बड़ा अजीब आदमी है ये। तो मैं तो था बच्चा। बोले कि एक डेट उन्होंने पूछा, समझ लीजिए 25 25 तारीख को तू फ्री है, मेरे साथ सन्मुखानंद में बजाएगा।
0: अच्छा
1: अच्छा। बच्चा ऐसा होता है कि उसको ये समझ नहीं होती कि बड़े लोगों को क्या नहीं कहना चाहिए।
0: अच्छा।
1: आज का रोनू मजुमदार होता तो नहीं बोलता। मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया। अच्छा, थे तो पिता के उम्र के मगर इंडस्ट्री में दादा दीदी ये चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: राज जी, दिलीप साहब, रफी साहब, किशोरदा, ऐसे उसको संज्ञा दी जाती है। तो किशोर कुमार सुपरस्टार को मैंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाता हूँ। मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, स्टूडियो के अंदर ठीक है। कहाँ तो नाराज होके बोल सकते थे पंचमदास से, अरे ये बड़ा लड़का बदतमीज है, इसको निकालो बाहर। वो बजाएगा नहीं तो पूजा कैसे होगा है? देख मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है।
0: क्या बात है।
1: ऐसे थे हमारे किशोरदा। बोले मेरे जैसा कंजूस, उनको ये भी मालूम नहीं था कि वो भगवान जैसा गाते हैं।
0: जी जी जी।
1: ऐसा कोई गा ही नहीं सकता।
0: जी जी।
1: तो दुर्गा पूजा बंगालियों का होता है शिवाजी पार्क में, वो बंगाल क्लब का, बंगाल क्लब के लिए वो गा रहे थे।
0: जी।
1: जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने तुरंत पांव पकड़ लिया, दादा मुझे माफ करिए मैं बजाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा।
0: जी जी।
1: तो किशोरदा के साथ मैं घर गया फिर गौरीकुंज। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो माँ के बहुत बड़े

0: सकते हैं अपने माँ के, गौरी प्रसन्न गांगुली
1: जी जी, अच्छा उनकी माँ का नाम,
0: उनकी माँ का नाम, तो माँ के नाम से ही वो बंगला बनाया। फिर वहां पे चलती का नाम गाड़ी वाला, वो जो गाड़ी है वो वहां पे आज भी खड़ी है, वो एक एक समझिए ना, एक पुराने जमाने की याद ताजा करता है। तो अगर तुम ना होते, ऊंचे लोग और एक गाने में लता जी याद करती है, जो लता जी मेरे साथ पीले कलर का फोन लेके जो खड़ी है, वो जो फोटो आप लोग देखते हैं बहुत फेमस जो फोटो मेरा है, जो मैं उनके जन्मदिन में हरदम पोस्ट करता हूँ,
1: जी जी,
0: तभी भी वो याद कर रही थी मेरे स्टूडियो में आके, ट्रायो डिजिटल मेरा स्टूडियो है
1: जी।
0: तो वहां आई तो बोल रही थी कि तूने जमीन आसमान में जो फ्लूट बजाया था वो आज भी याद आता है रोनू, आजकल ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं होता। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी, खुद के लिए नहीं, संगीत के लिए, क्या ये जमाना है, क्या हो रहा है, ये कटपेस से कैसे चलेगा। मैं आपको वो पीस सुना रहा हूँ जो जमीन आसमान का में मैंने
1: स्वागत,
0: देखिए अजीत भाई, ये वही है बांसुरी वाली बात की रे को साकर के मुझे बजाना पड़ेगा, तो वो आप सिर्फ बाया बजा देंगे इसमें,

0: वाह,
1: मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा दीदी ने इसको गाया है, प्लीज
0: ये गाना
1: जरा आप श्रोताओं को सुनवा दीजिए, फिर कुछ बातें मैं अगले एपिसोड में बोलूंगा
0: जी। सुनवाते हैं यही गीत।

0: ये गाना भी अद्भुत है, बड़ी ऊंचे सुर में लता दीदी ले जाती हैं और आपकी बांसुरी की तान तो बिल्कुल मोहित कर देती है।
1: तारा रा रा तारा रा रा ता ता ता ता ता, मतलब इतना ऊपर के स्वरों को दीदी उसमें भी एक मेलोडी को कायम रखती थी।
0: जी जी,
1: कर्कशता से कोसों दूर, कर्कशता तो शायद उनको स्पेलिंग भी उसका व्याकरण भी उनको मालूम नहीं।
0: सुर कोकिला तभी तो
1: स्वर कोकिला, माँ सरस्वती गा रही है, क्या बात करने का, हजार राहें मैंने बजाया। मुझे एक बात कहनी है जाने से पहले, शशि जी था उस दिन, शशि कपूर
0: जी
1: और राखी जी जो इस फिल्म में है, ये दोनों उस दिन मौजूद थे।
0: अरे वाह,
1: स्टूडियो में। और शशि कपूर जी जिस तरीके से, अरे क्या बात है, क्या बांसुरी बजाते हो बंगाली बाबू, तो जैसे जिंदा दिल वो फिल्मों में दिखते हैं, जितनी खूबसूरत उनकी हंसी, इतने ही खूबसूरत वो ऑफ द स्क्रीन भी वैसे ही थे। वो और देव साहब, तो देवानंद के साथ भी मैंने काम किया
0: जी।
1: आप सोचते होंगे इतनी तो मेरी उम्र नहीं है
0: जी।
1: कि नहीं। मैं देवानंद के साथ मैंने काम किया है
0: जी।
1: आप सोचिए।
0: तो दादा, ये जो मुलाकात है आपकी इन लोगों से, इन मुलाकातों का भी जिक्र करें, लेकिन अब आज तो हम यहाँ पर
1: अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बातें बताऊंगा
0: जी। तो जी। अब आज श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी की रचना थी, एसटी बर्मन की तर्ज थी। आज हम इन कुछ गानों के माध्यम से याद कर रहे हैं फिल्मकार चेतन आनंद को। सुनते हैं ये गीत। ये फिल्म किनारे किनारे का गीत है, आवाज मन्ना डे की है।

0: किनारे किनारे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे की आवाज थी। न्याय शर्मा ने इस गीत को लिखा था और जयदेव ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: अफसर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सुरैया की आवाज थी। नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और एस डी बर्मन ने धुन बनाई थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुनिए सुबह 7:30 से और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुबह 8:15 से। समसामयिक विषयों पर आधारित दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय होता है सुबह 8:30 से, जिसमें आज की बात होगी विश्व जूनोसिस दिवस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर। साथ ही प्रोफेसर सत्य प्रकाश त्रिपाठी की वार्ता होगी।

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र को योगदान विषय पर। श्रोताओं द्वारा हमारे व्हाट्सएप पर भेजी गई फिल्मी गीतों की फरमाइशें हम सुनवाएंगे सुबह 9 बजे से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, और 9:30 से हम सीधे जुड़ेंगे अपने श्रोताओं से कार्यक्रम हेलो अयोध्या के माध्यम से। फरमाइशी अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुनिए दोपहर 12:30 से। फेसबुक श्रोताओं की पसंद हम शामिल करेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में दोपहर 1 बजे से, और गैर फिल्मी गीत गजल सुनिए दोपहर 2 बजे से गीतांजलि के अंतर्गत। दोपहर 2:30 से होगा बहनों का कार्यक्रम अंगना, जिसमें चर्चा होगी मोबाइल फोन का सही प्रयोग, बनाए जागरूक नागरिक और बने किशोरी बेटी की सहेली विषयों पर। साथ ही कार्यक्रम में वार्ता होगी भारतीय अर्थव्यवस्था और प्राथमिक क्षेत्र विषय पर, वार्ताकार होंगी डॉक्टर अलका श्रीवास्तव। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी सुनिए दोपहर 3 बजे से। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय होता है शाम 5 बजे से, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व जूनोसिस दिवस पर। करियर गाइडेंस के अंतर्गत डॉक्टर अम्बरीश श्रीवास्तव बताएंगे कैनवास से कमाई चित्रकला में मॉडर्न करियर, और आपसे बातचीत करेंगी मंजली सिंह, साथ ही रोजगार समाचार भी होंगे। कार्यक्रम लोक संगीत सुनिए शाम 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से, और गूंजे स्वर गांव के सुनिए शाम 6:30 से। अरहर की खेती पर चर्चा होगी आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:45 से। साथ ही डॉक्टर बुद्ध भारती से पूनम श्रीवास्तव की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय होगा खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की उन्नत खेती। कार्यक्रम गीत गुंजन सुनिए रात्रि 8:15 से। आज की बात रात्रि 9:15 से, और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या रात्रि 9:30 से। इन सब कार्यक्रमों के अलावा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम और समाचार अपने नियत समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। तो ये था संक्षिप्त विवरण हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों का। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार।

0: मुख्यमंत्री ने योगी की पाती के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। कहा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगी की पाती के माध्यम से बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलने वाला ही खेलता है। सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाए नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। युवाओं के लिए खेल आज कैरियर में सपनों को साकार करने का भी माध्यम है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना 1 साथ पूरे देश में लागू हो।

0: हो गई। 14 नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में विवेचक ने कल जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को जिले में जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा।
4: उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सिद्धार्थनगर के लिए 45 लाख पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 6.25 लाख आज पहली जुलाई से हो चुका है और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्तर पे और सिद्धार्थनगर में सभी मंडलों में बड़े व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान होगा।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि जारी की। और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आज के खिलते दिन का आरंभ हम प्रभु चरणों में वंदन के साथ करते हैं ताकि हमारा दिन सफल एवं शांत बीते।

शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। शिव जपने से सारी चिंताएं, सारे व्यसन मिट जाते हैं। ये भक्ति रचना आपने सुनी हरिहरन के स्वर में। अब हम आपको सुनवाते हैं मीरा की लिखी रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: जी हाँ, राम रतन धन ऐसा है जिससे कोई लूट नहीं सकता। ये दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति रचना आपने सुनी। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है अमृत कलश। कुछ और भक्ति रचनाएं हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतिया बिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
3: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
4: मम्मी, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
5: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम अपने बच्चे।

0: का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
1: भक्ति की ये अमृत धारा बह रही है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, ये भक्ति रचना लता मंगेशकर के स्वर में।

सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। आइए अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में अर्पित करें।

0: legit thrill.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: इसी भक्ति रचना के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम अमृत कलश का प्रसारण आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से किया गया 101.9 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को

0: वर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित

0: बातों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज

0: ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स
3: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम सुर संगम।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
7: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

कार्यक्रम सुरसंगम में हम अपने श्रोताओं के लिए लाते हैं कुछ गैर फिल्मी गीत और गजल। आज के कार्यक्रम का आरंभ नुसरत फतेह अली खां और ए आर रहमान की युगल आवाजों में एक गीत।

0: देखिए श्रोताओं, इस गीत में कितनी प्यारी बात कही गई, रिश्ते बनाने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक लम्हा। तो भाई इन प्यारे रिश्तों को बचा कर रखिए।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी देश और दुनिया में कहीं भी। कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद वकील और साधना सरगम की युगल आवाजों में।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी।

0: मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
0: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में अभिवादन है। आज के कार्यक्रम में आज की बात होगी विश्व जूनोसिस दिवस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर, और प्रोफेसर सत्यप्रकाश त्रिपाठी की वार्ता होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र को योगदान विषय पर। पहले कर लेते हैं आज की बात विश्व जूनोसिस दिवस पर। पहले आपको बता दें जूनोसिस है क्या। जूनोसिस एक ऐसा संक्रामक रोग है जो दो प्रजातियों के बीच फैल सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों से इंसानों में या फिर इंसानों से जानवरों में फैलने वाला रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जूनोटिक रोग जनक बैक्टीरिया, वायरल या पैरासाइटिक हो सकते हैं। इसके अलावा ये सीधे संपर्क में आने से, खाने के जरिए या फिर पानी और पर्यावरण के माध्यम से भी इंसानों में फैल सकते हैं। जूनोसिस दुनिया भर में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि खेती के दौरान जानवर और इंसान साथ काम करते हैं। अगर एक बार जूनोसिस की समस्या हो गई तो ये जानवरों से मिलने वाले सामानों के उत्पादन और व्यापार में बाधा भी पैदा कर सकते हैं। इसी बीमारी से जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस टीके का सफलतापूर्वक ईजाद किया गया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां HIV, इबोला, COVID-19 आदि जूनोसिस बीमारी के अंतर्गत आती हैं। हर साल की तरह इस साल विश्व जूनोसिस दिवस 2026 की थीम है एक विश्व एक स्वास्थ्य, विदेशी रोगों की रोकथाम।
3: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अबनियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
4: आपके संदेश
5: संदेश से आते हैं,
4: आपके गीत
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में अब ऐसे एक व्यक्तित्व की चर्चा जिसने अपना सर्वस्व देश सेवा में दे दिया। संसार में ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने जीवन के केवल 52 साल के अंतिम 14 साल राजनीति में बिताए हों और इसी अल्प अवधि में महानतम ऊंचाइयों को छूकर इतिहास में अमर हो गए हों। ऐसे ही थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद,

0: संसदविद, राजनेता, मानवतावादी और इन सब से बढ़कर वे एक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उनमें भारत की पुरातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था और पाश्चात्य विचारों और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि थी। उनमें हिंदुओं की आध्यात्मिकता, सहनशीलता और मानवीय गुण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गहरी समझ का सुंदर समन्वय था, जो शिक्षाविद और संसदविद के रूप में उनके पूरे जीवन काल में परिलक्षित होता रहा। महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा से समाज को चमत्कृत कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश को दिए गए योगदान और कृतित्व पर विस्तार से जानते हैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश त्रिपाठी की वार्ता के माध्यम से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र को योगदान।
1: आजाद भारत के इतिहास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जिनके लिए देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उत्तर में कश्मीर से लेकर पूर्व में बंगाल तक उन्होंने देश की इंच इंच भूमि के लिए संघर्ष किया। उनका राष्ट्रवाद देश की एकता और अखंडता पर आधारित था। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, अदम्य साहस और अखंड भारत के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद, राजनेता और इन सब से बढ़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। कलकत्ता में 6 जुलाई 1901 में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी को विद्वत्ता, राष्ट्रीयता की भावना और निर्भयता अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी से विरासत में प्राप्त हुई। उनका लालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्हें धार्मिक कृत्यों को देखने एवं विद्वानों के बीच अत्याधुनिक और वैज्ञानिक विषयों पर हुई चर्चाओं को सुनकर उनमें भारत के पुरातन संस्कृत के प्रति गहरी आस्था तथा पाश्चात्य विचारों और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा मित्तर इंस्टीट्यूट भवानीपुर से ग्रहण की। आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश किया। वहां से उन्होंने 1923 में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर मुखर्जी ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दुनिया के सबसे युवा कुलपति बने। स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में 1950 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सहयोग से 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। वे जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण मुकुट मानते थे और अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते थे। इसके विरोध में उन्होंने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया। 11 मई 1953 को कश्मीर में प्रवेश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नजरबंदी के दौरान 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक यात्रा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन महज राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं थी, यह उस राष्ट्रवादी दर्शन का प्रतिबिंब था जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित किया। डॉक्टर मुखर्जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत केवल राजनीतिक सीमाओं से परिभाषित राष्ट्र नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपराओं और चिर अस्थायी राष्ट्रीय मूल्यों से आकारित एक जीवंत सभ्यता है। यह दृष्टिकोण आरएसएस के वैचारिक ढांचे से पूरी तरह मेल खाता है जो भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

0: के रूप में देखता है। आरएसएस ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए समाज में संगठन को मजबूत करने, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने इन्हीं आदर्शों को राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने हिंदुओं को भारत की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय आत्मा माना है। उनके अनुसार हिंदुत्व एक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है जिसने विश्व को सहिष्णुता, सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन, विश्व एक परिवार है जैसे मूल्यों को प्रदान किया है। परिणाम स्वरूप उनका राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता में निहित था। उनका मानना था कि मजबूत सांस्कृतिक जड़ों वाला राष्ट्र विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में देशभक्ति के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की अखंडता और एकता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय हित और आत्मसम्मान से प्रेरित था। इसी वैचारिक दृढ़ विश्वास ने अंततः उन्हें भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में भारत में राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। आज जब भारत अपने सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर एक बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी सोच पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। उनका जीवन एक चिरस्थायी संदेश था कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों, संगठन और निस्वार्थ समर्पण से प्राप्त होता है। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भारतीय राष्ट्रवाद की शाश्वत लौ का प्रतीक है, एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र की सेवा करने, सांस्कृतिक आत्मसम्मान को बनाए रखने और एक एकीकृत और एकजुट भारत के आदर्श की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके राष्ट्रीय चिंतन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: अखंड भारत और कश्मीर। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को आज का भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसी मांग के लिए उन्होंने 1953 में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उनके अनुसार राष्ट्र केवल भौतिक सीमाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पहचान है। उनका मानना था कि भारत की विविधता में एकता ही इसकी महानता है। सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों को इस साझा संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। मजबूत और अखंड राष्ट्र वे किसी भी तरह के अलगाववाद या देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना था जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली और एकजुट हो। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के आधार पर एक मजबूत राजनीतिक विकल्प प्रदान करना था। अस्तु, राष्ट्र की एकता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया गया उनका बलिदान प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श और विचार विकसित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, अदम्य साहस और अखंड भारत के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। उनका राष्ट्रीय चिंतन भारत की एकता और अखंडता का मुख्य आधार है।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश को दिए गए योगदान और उनके कृतित्व पर विस्तार से आपने सुना। प्रोफेसर सत्य प्रकाश त्रिपाठी की वार्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र को योगदान। ऐसे समाज सेवक, देश सेवक को हमारा नमन। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है।

0: चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: सुनत है कार्यक्रम मंगना माँ होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, देश और दुनिया में कहीं भी। श्रोताओं, हम आपको बता दें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा 31 जुलाई 2026 को 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। बच्चे स्वनामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट https://award.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोता, इस समय हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रचार माध्यमों पर हीट वेव लू की चेतावनी पर ध्यान दें। अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के पसीना सूखने वाले हल्के वस्त्र पहनें, धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का प्रयोग करें। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें या छाती का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती कपड़े से पोछें या नहलाएं। चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें। यात्रा करते समय पीने का पानी साथ में रखें। ओआरएस, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। इन सावधानियों से हम हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। और अब कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चलते चलते आज की कुछ खास खबरें समाचार पत्र से। समाचार पत्र दैनिक जागरण के अनुसार, जूनोसिस से बचना है तो स्वच्छता का रखें ख्याल। सोमवार को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाएगा। जूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। चिकित्सक डॉक्टर पीडी त्रिपाठी के अनुसार, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। समाचार पत्र अमर उजाला के माई सिटी अंक के अनुसार, वन महोत्सव सप्ताह के तहत रविवार को कई ब्लॉक में एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत फल और छायादार पौध लगाए गए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वन महोत्सव के तहत 1,10,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वन विभाग ने रविवार को अयोध्या के रामपथ पर पौधरोपण अभियान शुरू किया। जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में मरीजों की खासी भीड़ रही। अधिकतर मरीज पेट दर्द, डायरिया, लूज मोशन, खुजली और बुखार के थे। रामपथ को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत उदया चौराहे से लता चौक तक सड़क किनारे और फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाया गया। और सरयू नदी में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय लिया है। घाटों पर होगी बैरिकेडिंग, लगेंगे चेतावनी बोर्ड। इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: प्रणाम अयोध्या।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम लाए हैं श्रोताओं के संदेशों का कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
6: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: जी हाँ दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म और आपके संदेशों को लेकर मैं हाजिर हूँ आराधना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में। पसंद है बहुत सारे श्रोताओं की, जो गीत हमारे दिल के करीब होते हैं उन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं। वो गीत जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जो हमारी भावनाओं के शब्द

बनकर गीतों में उभरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पारस मड़ी फिल्म के गीत के साथ, जिसे सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। आप सबकी पसंद है फिल्म पारस मड़ी का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी अयोध्या से। जिन जिन श्रोताओं ने अपनी फरमाइश भेजी है कृपया अपने रेडियो की साउंड तेज कर लें, कहीं उनका नाम मिस ना हो जाए। अगला गीत हम शामिल करेंगे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गीत हम लाए हैं अपने इन श्रोताओं की पसंद पर। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की पसंद पर। अजब प्रेम की गजब कहानी।

0: नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ श्रोताओं, हम जानते हैं कि आप अपने नाम का, अपनी पसंद के गीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अपने इन श्रोताओं की का इंतजार हम खत्म करते हैं, जिन्होंने लिखा है, हमें ये संदेश भेजा है खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा, राजकुमार, लक्ष्मी, रोहित, नंदिनी, ऋतु और मुकेश ने, आप सबने पसंद किया है फिल्म बेमिसाल का गीत।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का

श्रोताओं, हमारी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने खूबसूरत जगहों को, अपनी प्रकृति को साफ सुथरा रखें, ताकि हम हर समय ये गा सकें कितने खूबसूरत ये तस्वीर है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे सनम से, और इस गीत के लिए हमारे श्रोताओं के नाम है कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना।

ऐसे मध्यम और मीठे गीतों को सुनने के लिए लिखते रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर। अगला गीत फिल्म भाभी से सुना चाहते हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल।

आज के कार्यक्रम में फिल्म लगान का गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद बना है। पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश की पसंद।

काले मेघा पानी तो बरसाओ। इसी विनती के साथ आज के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत से हम चाहेंगे इजाजत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: हेलो
5: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
6: माय नंबर इज
0: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत के बाद अब हम अपने श्रोताओं से सीधे जुड़ते हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या के माध्यम से।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
0: हेलो एंड वेलकम टू आवर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक, तो आज श्रोताओं से मैं बातें करूंगी आराधना। आपको डायल करना होगा हमारा नंबर 7376।

0: 7780 4090। आ चुके हैं हमारे श्रोता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम शिवपाल सिंह है।
0: शिवपाल जी,
1: नवाबगंज गोंडा से बोल रहे हैं, बिश्नोहरपुर।
0: जी, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया आप अपना रेडियो अपने से दूर कर दें या बंद कर दें।
1: दूर हम
0: जी, बहुत उसे नॉइज आती है ना, तो उससे आपकी बात हमारे तक ठीक से पहुंच नहीं पाती। जी शिवपाल जी, कैसे हैं आप? जी क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया मैम।
0: आपकी डोर बेल बज रही है। जी सुबह सुबह आपके यहाँ मेहमान आ गए हैं।
1: जी मैम।
0: चलिए आप अपने मेहमान का भी स्वागत कीजिए और आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं। क्या करते हैं शिवपाल जी आप?
1: बस दुकान है मैम।
0: किस चीज की?
1: किराना स्टोर है मैम।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप दिन भर उसी में व्यस्त रखते हैं और अपने आप को, और दुकान में आप साथ ही रेडियो भी चला रहते हैं।
1: हाँ मैम।
0: आपके काम के दौरान आपका रेडियो भी ऑन रहता है?
1: जी मैम।
0: जी दिन भर आप सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं?
1: जी मैम।
0: जी अभी आपने दुकान खोल दी?
1: जी मैम।
0: चलिए आप अपने काम में भी व्यस्त रहे।
1: दुकान पे है मैम।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपका दिन अच्छा जाए। और आप क्या सुनना चाहेंगे? जी
1: तवायफ फिल्म का।
0: तवायफ फिल्म का गीत कौन सा?
1: जी मैम।
0: जी कौन सा गीत?
1: बहुत देर कर दी हुजूर आते आते।
0: और बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा गीत है जी, अपने समय का बहुत ही पॉपुलर गीत रहा है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: जी मैम
0: धन्यवाद।

किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है, लेकिन त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। तो दोस्तों, मेहनत ही ऐसी चीज है जिसके बल पर हम अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। चलिए हम अपने अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल

0: करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: नमस्ते भाई
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम जान सकते हैं?
1: हम अनुसुईया दास बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश रीवा जिला गुड़ कटरा मोहल्ला से बोल रहा हूँ।
0: जी अनुसुईया दास जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: अयोध्या में रहते थे, रघुनाथ जी आश्रम में रहते थे अयोध्या जी में, गाँव से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कहाँ से?
1: गांव से बोल रहा हूँ, अयोध्या में जी में रहते थे, रघुनाथ जी आश्रम में।
0: जी जी जी जी जी, तो अनुसुईया दास जी,
1: गाँव से बोल रहा हूँ
0: जी, आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: दाता सुना दीजिए।
0: दाता फिल्म का कौन सा गीत?
1: अब मैं ना कैसे है?
0: जी बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: हम ठीक है, मैं आपकी कार्यक्रम सुनाई दे नहीं है, मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं देता आपकी कार्यक्रम।
0: जी आप इसको मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं।
1: हाँ मध्य प्रदेश सीमा जिला से बोल रहा हूँ, मैं सुनाई नहीं देता, बात कर लेता हूँ।
0: चलिए बहुत बढ़िया है, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिएगा अनुसुईया दास जी, गीत अपनी पसंद का आप सुनिए। धन्यवाद,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: 7376 80 40 90 ये है हमारा फोन नंबर, बहुत ही आसान नंबर है, आसान तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि आपके दिलो दिमाग पर ये नंबर छा जाए। चलिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े थे, फिलहाल लगता है हमारा उनके साथ संपर्क कट गया है। अगली कॉल हम ज़रूर शामिल करेंगे, आप हमसे जुड़ते रहें 7376 80 40 90 के साथ। देखते हैं हमारे साथ अगला कॉलर कौन जुड़ा है। हेलो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो दीदी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहा है।
1: नमस्कार दीदी, कॉल मत काटना, मैं भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ, सीहोर मध्य प्रदेश से।
0: जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भगवान सिंह जी क्या करते हैं आप।
1: जी दीदी दीदी खेती किसानी करते हैं।
0: क्या लगाया रखा है इस समय आपने।
1: दीदी इस समय सोयाबीन मक्का धान लगाया है।
0: जी तो इस समय आपको भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है।
1: जी जी दीदी
0: सिंचाई के लिए आपको भरपूर पानी मिल पा रहा है।
1: जी हाँ दीदी सिंचाई के लिए भरपूर पानी है, अभी तो बरसात हो रही है हमारे इधर।
0: आहा क्या बात है। चलिए तो आपकी खेती में।
1: हेलो
0: जी
1: जी
0: जी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भरपूर खेती हो और अच्छी फसल हो।
1: जी।
0: क्या सुनवाएं हम आपको।
1: हाँ, दीदी फिल्म का नाम है मोहरा और गाने के बोल है

0: कजरे की धार उन तीन दोस्तों को याद करना चाहेंगे दीदी।
1: जी बिल्कुल।
0: गुंजन तिवारी जी अयोध्या से हैं और कानपुर से पूनम दीदी हैं और स्वाति सिंह जी गोंडा से।
1: जी चलिए, तो आप सभी के लिए हम आपकी पसंद का गीत भेज रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी।
0: धन्यवाद दीदी।

0: जी हाँ दोस्तों, अपनी पसंद का मीठा मीठा गीत सुनने के लिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड।
0: चलिए कोई बात नहीं, कॉलर हमारे साथ बार बार जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किन्हीं वजहों से उनकी कॉल हमसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। 7376-8040-90 ये है हमारा नंबर। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो, चलिए देखते हैं, हमारे कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हेलो
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
2: सपना सिंह बात कर रही हूँ मैम, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
0: सपना जी क्या करती हैं? बहुत मीठी आवाज है आपकी।
2: मैम मैं टीचर हूँ।
0: टीचर हैं तो आपके स्कूल तो अब खुल गए?
2: मैम स्कूल में पहले पढ़ाती थी, अब घर पे पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, तो कितने स्टैंडर्ड के बच्चे आपके पास आते हैं?
2: मैम 8th क्लास तक।
0: तो ये बताइए, इस दौरान तो अभी जब स्कूल

0: स्कूलों की छुट्टी थी जी, तो छुट्टियों के दौरान आपने क्या किया?
1: जी मैम, फिर से बोलिए, क्या बोलिए?
0: मैंने कहा कि इस दौरान, अभी गर्मियों की छुट्टी थी, इस दौरान आपने क्या किया?
1: मैं राइटर भी हूँ तो मैं लिखती भी हूँ।
0: क्या बात
1: है। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ।
0: जी, क्या लिखती हैं? कविताएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, क्या लिखती हैं?
1: शायरी भी लिखती हूँ मैं।
0: शायरी लिखती हैं तो कुछ हो जाए
1: रेडियो पे जो प्रोमो चलते हैं ना, मैं उसी को लिखती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मैम सलाम मूवी का।
0: सनम?
1: नहीं मैम, छलांग, छलांग मूवी का।
0: छलांग? छलांग तो शायद हमारे पास नहीं है अभी। कोई और फिल्म आप सुनना चाहेंगी?
1: मैम छलांग मूवी नहीं है
0: जी। और कोई फिल्म आप सुनना चाहिए?
1: हमराज का।
0: हमराज?
1: हाँ, हमराज मैम, न्यू हमराज।
0: न्यू हमराज, चलिए।
1: हाँ, उसी का टाइटल सॉन्ग रहेगा मैम।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया है और कार्यक्रम में आप फिर शामिल होइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया
1: मैम, कॉल रिसीव करने के लिए आपका शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, इसका बहुत बहुत
1: आपका भी मैम। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आप अपनी पसंद का गीत सुनिए।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ लगातार हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं और देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते मैम, रुपेश बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
0: क्या हाल चाल है आपके रुपेश जी?
1: एकदम ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास।
0: क्या करते हैं आप?
1: प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं मैम, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम है।
0: तो आजकल कैसा बिजनेस चल रहा है?
1: जी मैम आवाज कम लग रही है।
0: मैंने कहा आजकल आपका बिजनेस कैसे चल रहा है?
1: हाँ, बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये बिजनेस ऐसा है ना कि ये कभी मध्यम होता ही नहीं है।
0: अच्छा, मुनाफा ही मुनाफा है।
1: हाँ, मुनाफे की तो गारंटी रहती है, गारंटेड निश्चित तौर पर मुनाफा होता है।
0: चलिए, आप ऐसे ही खुश रहें और आपका बिजनेस दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की करे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
1: ये होता है कि कभी कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पूरे तरीके से खाली हो जाती है।

0: जी, तो रुपेश जी आज क्या हम आपको सुनवाएं?
1: नूरी मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए।
0: नूरी फिल्म का गीत, बहुत ही प्यारा गीत है।
1: नूरी नूरी टाइटल सॉन्ग
0: जी, बिल्कुल। चलिए, आपकी पसंद का गाना आपके लिए आपके रेडियो सेट पर।
1: समय गाना सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा
0: जी। चलिए, आप अपनी पसंद का गीत सुनिए और कार्यक्रम में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: माँ, ये मोटा चश्मा कब उतरेगा?
1: अरे शुगर ने तो मेरी आँख का पर्दा ही खराब कर दिया है।
2: मुझे तो मोतिया बिंद हो गया है।
3: अब आपके सुनैन आई हॉस्पिटल में हर उम्र की आँखों की हर समस्या का समाधान, मोटे चश्मे से छुटकारा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी और तुरंत छुट्टी। शुगर से खराब हुए आँखों के पर्दे का इलाज नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल, सुनैन आई हॉस्पिटल, निकट वी मार्ट, नियावा, फैजाबाद। कॉल करें 9838100840।
4: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
5: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
4: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
5: और साथ में अपना नाम, पता
4: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
5: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com, AYODHYA

0: kashvanivani@gmail.com।
1: चलिए आज के कार्यक्रम के अंतिम कॉलर को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका नाम क्या है? हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार जी, नाम क्या है आपका?
2: प्रीतम बोल रहे हैं।
1: प्रीतम जी, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है आपके?
2: बस मैं बढ़िया हूँ।
1: बढ़िया है, चलिए ऐसे ही बढ़िया आपका दिन कटे और दिन रात आपके सुकून भरी हो। जी प्रीतम जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पास समय
2: था।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल हुए, धन्यवाद।

0: मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये

तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जिसे आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आराधना के साथ। इसी कार्यक्रम में फिर से मिलने के वादे के साथ लेते हैं आपसे विदा। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला स्वप्निल का, और प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। आपका दिन शुभ गुजरे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य

0: जो है वो हिट हो चुकी है रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
1: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य